0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में पोलिश मिशनरी धम बहन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 14। मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंग का जीवन यीशु के इन शब्दों से मेल खाता है। पुलार भाषा में नेनी सुकाबे का अर्थ है बच्चों की माँ। ये नाम पोलिश मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंग SMCB के साथ जुड़ा है, जिन्होंने सेनेगल के वेलिंगारा में बच्चों के लिए एक कुपोषण केंद्र खोला है। बचपन से ही सिस्टर क्रिसोलोगा के दो सपने थे, एक नर्स बनना और एक मिशनरी बनना। दोनों ही सपने उनके धर्म संघ बुलाहट में पूरे हुए। उन्होंने संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ में प्रवेश किया, जहाँ तीन परम्परागत व्रतों के अलावा एक चौथा व्रत भी लिया जाता है, करुणा का व्रत। यही व्रत सिस्टर क्रिसोलोगा के मिशनरी बुलाहट का आधार स्तंभ बन गया। सेनेगल में मिशनरी के रूप में पहले दिन से उन्होंने गरीबी और भुखमरी का सामना किया, खासकर बच्चों के बीच। वार्षिक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सेनेगल में 5 साल से कम उम्र के 10 में से एक बच्चा बहुत ज़्यादा कुपोषण से जूझ रहा है और 6 से 23 महीने के सिर्फ 10% बच्चों को ही ठीक ठाक खाना मिल पाता है। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की उम्र वाली 52% औरतें एनीमिया से जूझ रही हैं, इसलिए भूखी माताएं बहुत कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। सिस्टर क्रिसोलोगा बताती हैं, जब वे वेलिंगारा क्लिनिक में नर्स के रूप में सेवा दे रही थीं, माताएं अक्सर अपने बच्चों के साथ आती थीं। बच्चे मुश्किल स्थिति में होते थे। कोल्टा का दौरा करने पर उन्होंने वहां कुपोषण के शिकार बच्चों का केंद्र देखा, जिसको उनके ही धर्म संघ द्वारा खोला गया था। तब उन्हें महसूस हुआ कि वेलिंगारा में भी ऐसे ही केंद्र की जरूरत है। 13 सितंबर 1993 को सिस्टर ने वेलिंगारा में कुपोषित बच्चों के लिए सेंटर शुरू किया। शुरू से ही इसके विकास में कई चमत्कार हुए। मिशनरी बहन याद करती हैं कि शुरू में सिर्फ 2 छोटे कमरे थे, एक ऑफिस एवं गोदाम का काम करता था और दूसरे में 8 बेड थे। पहली बारिश के बाद उस जगह में पानी भर गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें एक नई जगह ढूंढनी होगी। वे महापौर के पास गए और महापौर ने उन्हें एक खाली बिल्डिंग दी। यह बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में था, लेकिन उसमें बिजली और पानी था, इसलिए वे खुश हो गए। केंद्र में बच्चे चिकित्सा एवं पोषण पाने आते हैं। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और निर्जलित स्थिति के कारण रो भी नहीं सकते, और कुछ अर्ध सुस्त स्थिति में। धाम बहनों ने युवा माताओं को अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाया। उन्हें उनकी आदतों एवं धारणाओं को बदलने में काफ़ी समय लगा। ये माताएं गांव में स्वच्छ जल के बिना कठिन परिस्थिति में रहती हैं। कुछ लोग साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर चलकर धाम बहनों तक पहुंचती हैं। पिछले कुछ ही सालों में लगभग 20,000 बच्चे केंद्र में आए हैं। दुख की बात है कि कुछ शिष्यों को बहुत देर से लाया गया। सौभाग्य से जैसे जैसे देश का सड़क और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, स्थिति में सुधार हुआ, मानसिकता भी धीरे धीरे बदलने लगी। महिलाओं ने ना सिर्फ अपने बच्चों की देखरेख करना सीखा, बल्कि अपनी गरिमा को भी महत्व देना सीखा। ईश्वर अपनी कृपा द्वारा लोगों के माध्यम से काम करते हैं। धर्म बहन याद करती हैं कि उनके पास हमेशा बच्चों के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन ठीक उसी समय पर ईश्वर उनके रास्ते पर किसी न किसी को लाते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस में मिशेल नॉरेक्स के साथ एक मीटिंग से वेलिंगारा के बच्चे फाउंडेशन बनाने का रास्ता खुला, जिससे फंड जमा करने में मदद मिली। एक बार जब वे सड़क पर चल रही थी तो सोच रही थी कि उस दिन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, थोड़ा सा चावल बाकी है, आगे क्या होगा, पैसे लगभग नहीं थे। अचानक सड़क के उस पार दो महिला पर्यटकों ने आवाज दी, बातचीत शुरू हुई और वे उन्हें अपना सेंटर ले गए। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी, अपनी जेब से सारे पैसे निकाल दिए और उस दिन से उन्होंने उनकी मदद करना कभी नहीं छोड़ा। सिस्टर को कई बच्चे याद हैं, लेकिन एक कहानी उनके दिल में गहराई से बसी है। मिशनरी बहन याद करती हैं, एक दिन कोनियागे काबिले की एक 16 साल की मुस्लिम माँ आई। उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और लड़की मुश्किल से सांस ले रही थी, ठंडी लग रही थी। उसका वजन सिर्फ 600 ग्राम था। माँ ने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, नीनी सुकाबे, मेरी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा, हम प्रार्थना करेंगे, हम जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। मैंने बच्चे को गर्म करने की कोशिश की और एक फीडिंग ट्यूब डालने में कामयाब रही। माँ ने दूध निकाला और धर्म बहन ने उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट किया। दो महीने बाद छोटी बच्ची का वजन 3 किलोग्राम हो गया और वह खुद दूध पी सकती थी। यह एक चमत्कार था। 6 साल बाद उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा। उसकी माँ ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, देखो यह नीनी सौकाबे है जिसने तुम्हें बचाया। इस तरह यहाँ कितनी जाने बची। सिस्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांव में झाड़ियों से होते हुए यात्रा की और खून की कमी से मर रहे बच्चों को मौके पर ही खून चढ़ाया। भले लोगों की मदद से धर्म बहन ने सेंटर को बड़ा किया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा अतिथिशाला बनाया। जब उनसे उनके मुख्य सपने के बारे में पूछा गया तो सिस्टर क्रिसोलोगा मुस्कुराई और कहा, मेरा सपना है कि यह सेंटर बच्चों का हॉस्पिटल बन जाए और दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने पोलिश मिशनरी धर्म बहन सिस्टर क्रिसोलोगा मिंख की कहानी सुनी, जो संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ के सदस्य हैं और सेनेगल में बच्चों की मदद के कारण बच्चों की माँ कही जाती हैं। कहानी में धर्म बहनों के द्वारा ईश्वर की दया का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो एक सच्चे ख्रिस्ते के रूप में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरणा देती है। कहानी को सिस्टर एलेना इसाकेन को SMCB ने लिखा है और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कटुता। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भावना प्रधान होता है। हम सब भावों से संचालित होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, क्षमा, हार जीत, श्रद्धा, संदेह का महत्व भावनाओं से ही होता है। किसी से प्यार होना सामान्य बात है, उसी तरह किसी से एक तरफा प्यार होना सामान्य है। लेकिन खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। एक तरफा प्यार वाकई बहुत गहरा और अकेलापन देने वाला दर्द होता है, क्योंकि इसमें उम्मीद और अस्वीकृति का एहसास साथ चलता है। इसमें इंसान ना तो पूरी तरह आगे बढ़ पाता है और न ही पीछे हट पाता है। उस प्यार के रास्ते में आए अन्य व्यक्ति के प्रति मन में कड़वाहट या कटुता पाले जीवन की गाड़ी बढ़ती रहती है। जब भी उस व्यक्ति से आमना सामना होता है तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या कटुता बढ़ने लगती है। जाने अनजाने आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। ऐसे में कटुता को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय खुद के प्रति क्षमा भाव अपनाना और अहंकार को त्यागना है। मन का मैल और कड़वाहट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा, और किसी की गलती को माफ करने से मन का बोझ हल्का होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका कटुता।
1: मम्मी, अब हमने छिपकर तो कुछ नहीं किया ना? अमित ने अपनी मम्मी जया को सब कुछ बता दिया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और यह भी नहीं छिपाया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
2: वीणा बेटा, मानती हूँ कि तुमने और अमित ने अपने अपने घर में सब कुछ बता दिया और हमसे कुछ नहीं छुपाया। यह बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं अमित से तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
1: मम्मी, आप तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर अमित की मम्मी को न जाने किस बात की खुन्नस है हमसे कि हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही है। आखिर न जाने कौन सी और क्या बात है मम्मी?
2: बात क्या है बेटा, एक गलत फहमी है बस।
1: ऐसी कौन सी गलत फहमी है जया आंटी को?
2: बेटा, किसी समय मैं और अमित की माँ जया एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे।
1: सच मम्मी? फिर
2: मैं और तुम्हारे पापा भी एक दूसरे को वैसा ही चाहते और पसंद करते थे जैसे तुम और अमित एक दूसरे को पसंद करते और चाहते हो।
1: फिर
2: क्या बेटा, जया भी तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन ये पसंद करना और चाहना एक तरफा ही था, क्योंकि तुम्हारे पापा सिर्फ मुझे ही चाहते थे। कॉलेज में जब तक रहे जया मुझसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हुई तब से जया मुझसे बात ही नहीं करती। उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि तुम्हारे पापा को मैंने उससे छीन लिया। बस तभी से वह मुझसे नाराज़ रहने लगी है।
1: क्या मम्मी, जया आंटी भी अभी तक कॉलेज के दिनों में ही जी रही है? बरसों पुरानी बात को लेकर वह आज भी घूम रही हैं? जब जिन पापा की वजह से वह आज भी आपसे कटुता रखती हैं, वह पापा भी अब हमारे बीच नहीं रहे?
2: अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा।
3: देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी में मेरी मम्मी इतनी बाधा डाल रही हैं, तो कहीं हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़ जाए।
1: नहीं अमित, तुम कुछ भी बोलो, कोर्ट मैरिज के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये भी कोई शादी हो यार।
3: मगर इसके सिवा और चारा भी क्या रह गया अब?
1: अच्छा अमित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मी क्यों हमारी शादी के खिलाफ है।
3: तुम क्या जानती हो क्यों खिलाफ है मम्मी?
1: मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जया आंटी और मेरे मम्मी पापा ये सभी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरी मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उधर तुम्हारी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत पसंद करती थी। लेकिन पढ़ाई के बाद जब मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई तो जया आंटी ने मम्मी से यह सोचकर कटुता पाल ली कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को उनसे छीन लिया है। बस तब से ही जया आंटी ने मेरी मम्मी से बातचीत ही बंद कर दी है।
3: ओह, तो यह बात है।
1: हाँ,
3: तभी तो मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा वाला कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी, तुम भी अच्छा कमा रही है, और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर तकलीफ किस बात की है?
1: आंटी ने मन में मम्मी के लिए जो कटुता पाल रखी है वही कटुता ही आंटी को हमारी शादी में बाधा बना रही है।
3: तुम सही कह रही हो शिखा, लेकिन क्या अगर हमने मम्मी की मर्जी के विरुद्ध शादी की तो क्या तुम तैयार हो?
1: हाँ अमित, मैं तो तब भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आंटी और अंकल दोनों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगी। तुम कुछ भी बोलो यार अमित।
3: पापा ने तो कब से हाँ कर दी है, लेकिन बस मम्मी को मनाना ही बाकी रह गया है।
1: तो फिर अंकल को कहो ना कि वे आंटी को मनाएं।
3: तुम तो जानती हो मम्मी के आगे पापा की चलती कहाँ है।
1: फिर
3: चिंता ना करो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: देखो बेटा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शिखा जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। फिर शादी के लिए दुनिया में क्या एक शिखा ही बची है तुम्हारे लिए? मैं उससे कहीं अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी तुम्हारी।
3: आखिर आपको शिखा पसंद क्यों नहीं है?
4: मैं कह चुकी हूँ, पसंद नहीं है तो नहीं है। हर एक चीज़ का कारण नहीं होता है।
3: और बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता।
4: मैं कह चुकी हूँ तुमसे।
3: तो फिर मुझसे ही सुन लो वह कारण जिसकी वजह से आप शिखा से नफरत करती हैं। और वह कारण है अपनी कॉलेज लाइफ में आपका शिखा के पापा से एक तरफा प्यार में पड़ना और उनका शिखा की मम्मी से शादी कर लेना। बस इसी बात को आपने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, इसीलिए आप अपनी उस हार को मेरी शादी से मना करके अपनी जीत में बदलना चाहती हैं।
4: ये क्या कह रहे हो बेटा तुम?
3: मैं सच कह रहा हूँ माँ, कभी कभी अतीत पर पड़ी समय की धूल को वर्तमान की आंधी भी उड़ा देती है और अतीत एक बार फिर सामने होता है।
4: तुम सच कहते हो बेटा, पर मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
3: यह इंसान की फितरत है माँ, जब वह हालातों से हार जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता है तो उनसे समझौता कर लेता है।
4: मगर जिस कटुता को मैंने सालों साल अपने दिल की दीवारों में कैद करके रखा है, एक ही झटके में उसे दिल से निकाल कैसे सकती हूं मैं?
3: आप किसी से नफरत और उसकी कटुता का बोझ कब तक यूं ही ढोती रहेंगी? आपने जब ये कटुता पाली होगी तब से लेकर अब तक नदियों में कितना पानी बहकर यहाँ से वहाँ हो गया और आप अब भी वहीं की वहीं खड़ी हैं।
4: मगर बेटा वो
3: आपने भी कभी प्यार किया है माँ, आपको उसी प्यार का वास्ता, किसी को पा लेने और किसी को खो देने की खुशी और दर्द आप अच्छी तरह से समझती हैं। मान भी जाओ माँ।
4: ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में अब और अधिक बाधा नहीं बनना चाहती। कल हम शिखा के घर जरूर चलेंगे।
3: ओ माँ, यू आर अ ग्रेट मदर।
1: नमस्ते आंटी, आइए आइए। मम्मी देखो कौन आया है।
2: अरे जया, तुम आज यहाँ? आओ आओ बैठो।
3: नमस्ते आंटी।
2: नमस्ते बेटा। हाँ जया, और सुनाओ, आज मेरे गरीब खाने पर कैसे? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के।
4: वीणा, मुझे भी तुमसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही है।
1: तो इस खुशी को गले मिलकर मनाओ।
4: कैसी हो वीणा तुम?
2: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ।
4: क्या सुनाऊँ वीणा, ये वक्त ही है जो एक दूसरे से अलग भी कर देता है और एक दूसरे से मिला भी देता है। मुझे माफ़ कर देना वीणा, मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती रही।
3: और अब आपकी खुशी का कारण बनने जा रही हैं आंटी।
4: हाँ वीणा, मुझे भी शिखा बेटी और अमित का रिश्ता मंजूर है।
2: अरे बधाई हो जया, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही ली।
4: इतने सालों के बाद मैं आज रात हल्की होकर बहुत बहुत सुख की नींद सो पाऊंगी, वरना मेरे सीने पर एक बोझ सा था जिसके लिए मैं इतने सालों घूमती रही। सचमुच किसी को माफ़ कर देने से मन कितना हल्का और खुशी से भर जाता है।
2: सच बताऊं, मेरा भी मन जैसे हल्का होकर हवा में उड़ने लगा है।
0: कटुता, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अपर्णा सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार्य कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में पोलिश मिशनरी धम बहन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 14। मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंख का जीवन यीशु के इन शब्दों से मेल खाता है। पुलार भाषा में नेनी सुकाबे का अर्थ है बच्चों की माँ। ये नाम पोलिश मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंख SMCB के साथ जुड़ा है, जिन्होंने सेनेगल के वेलिंगारा में बच्चों के लिए एक कुपोषण केंद्र खोला है। बचपन से ही सिस्टर क्रिसोलोगा के दो सपने थे, एक नर्स बनना और एक मिशनरी बनना। दोनों ही सपने उनके धर्म संघ बुलाहट में पूरे हुए। उन्होंने संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ में प्रवेश किया, जहाँ तीन परम्परागत व्रतों के अलावा एक चौथा व्रत भी लिया जाता है, करुणा का व्रत। यही व्रत सिस्टर क्रिसोलोगा के मिशनरी बुलाहट का आधार स्तंभ बन गया। सेनेगल में मिशनरी के रूप में पहले दिन से उन्होंने गरीबी और भुखमरी का सामना किया, खासकर बच्चों के बीच। वार्षिक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सेनेगल में 5 साल से कम उम्र के 10 में से एक बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषण से जूझ रहा है, और 6 से 23 महीने के सिर्फ 10% बच्चों को ही ठीक ठाक खाना मिल पाता है। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की उम्र वाली 52% औरतें एनीमिया से जूझ रही हैं। इसलिए भूखी माताएं बहुत कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। सिस्टर क्रिसोलोगा बताती हैं, जब वे वेलिंगारा क्लिनिक में नर्स के रूप में सेवा दे रही थीं, माताएं अक्सर अपने बच्चों के साथ आती थीं। बच्चे मुश्किल स्थिति में होते थे। कोल्टा का दौरा करने पर उन्होंने वहां कुपोषण के शिकार बच्चों का केंद्र देखा, जिसको उनके ही धर्म संघ द्वारा खोला गया था। तब उन्हें महसूस हुआ कि वेलिंगारा में भी ऐसे ही केंद्र की जरूरत है। 13 सितंबर 1993 को सिस्टर ने वेलिंगारा में कुपोषित बच्चों के लिए सेंटर शुरू किया। शुरू से ही इसके विकास में कई चमत्कार हुए। मिशनरी बहन याद करती हैं कि शुरू में सिर्फ 2 छोटे कमरे थे, एक ऑफिस एवं गोदाम का काम करता था और दूसरे में 8 बेड थे। पहली बारिश के बाद उस जगह में पानी भर गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें एक नई जगह ढूंढनी होगी। वे महापौर के पास गए और महापौर ने उन्हें एक खाली बिल्डिंग दी। यह बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में था, लेकिन उसमें बिजली और पानी था, इसलिए वे खुश हो गए। केंद्र में बच्चे चिकित्सा एवं पोषण पाने आते हैं। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और निर्जलित स्थिति के कारण रो भी नहीं सकते, और कुछ अर्ध सुस्त स्थिति में। धाम बहनों ने युवा माताओं को अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाया। उन्हें उनकी आदतों एवं धारणाओं को बदलने में काफ़ी समय लगा। ये माताएं गांव में स्वच्छ जल के बिना कठिन परिस्थिति में रहती हैं। कुछ लोग साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर चलकर धर्म बहनों तक पहुंचती हैं। पिछले कुछ ही सालों में लगभग 20,000 बच्चे केंद्र में आए हैं। दुख की बात है कि कुछ शिष्यों को बहुत देर से लाया गया। सौभाग्य से जैसे जैसे देश का सड़क और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, स्थिति में सुधार हुआ, मानसिकता भी धीरे धीरे बदलने लगी। महिलाओं ने ना सिर्फ अपने बच्चों की देखरेख करना सीखा, बल्कि अपनी गरिमा को भी महत्व देना सीखा। ईश्वर अपनी कृपा द्वारा लोगों के माध्यम से काम करते हैं। धर्म बहन याद करती हैं कि उनके पास हमेशा बच्चों के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन ठीक उसी समय पर ईश्वर उनके रास्ते पर किसी न किसी को लाते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस में मिशेल नॉरेक्स के साथ एक मीटिंग से वेलिंगारा के बच्चे फाउंडेशन बनाने का रास्ता खुला, जिससे फंड जमा करने में मदद मिली। एक बार जब वे सड़क पर चल रही थी तो सोच रही थी कि उस दिन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, थोड़ा सा चावल बाकी है, आगे क्या होगा, पैसे लगभग नहीं थे। अचानक सड़क के उस पार दो महिला पर्यटकों ने आवाज दी, बातचीत शुरू हुई और वे उन्हें अपना सेंटर ले गए। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी, अपनी जेब से सारे पैसे निकाल दिए और उस दिन से उन्होंने उनकी मदद करना कभी नहीं छोड़ा। सिस्टर को कई बच्चे याद हैं, लेकिन एक कहानी उनके दिल में गहराई से बसी है। मिशनरी बहन याद करती हैं, एक दिन कोनियागी काबिले की एक 16 साल की मुस्लिम माँ आई। उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और लड़की मुश्किल से सांस ले रही थी, ठंडी लग रही थी। उसका वजन सिर्फ 600 ग्राम था। माँ ने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, नीनी सुकाबे, मेरी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा, हम प्रार्थना करेंगे, हम जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। मैंने बच्चे को गर्म करने की कोशिश की और एक फीडिंग ट्यूब डालने में कामयाब रही। माँ ने दूध निकाला और धर्म बहन ने उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट किया। दो महीने बाद छोटी बच्ची का वजन 3 किलोग्राम हो गया और वह खुद दूध पी सकती थी। यह एक चमत्कार था। 6 साल बाद उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा। उसकी माँ ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, देखो यह नीनी सौकाबे है जिसने तुम्हें बचाया। इस तरह यहाँ कितनी जाने बची। सिस्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांव में झाड़ियों से होते हुए यात्रा की और खून की कमी से मर रहे बच्चों को मौके पर ही खून चढ़ाया। भले लोगों की मदद से धर्म बहन ने सेंटर को बड़ा किया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा अतिथिशाला बनाया। जब उनसे उनके मुख्य सपने के बारे में पूछा गया तो सिस्टर क्रिसोलोगा मुस्कुराई और कहा, मेरा सपना है कि यह सेंटर बच्चों का हॉस्पिटल बन जाए और दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने पोलिश मिशनरी धर्म बहन सिस्टर क्रिसोलोगा मिंक की कहानी सुनी, जो संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ के सदस्य हैं और सेनेगल में बच्चों की मदद के कारण बच्चों की माँ कही जाती हैं। कहानी में धर्म बहनों के द्वारा ईश्वर की दया का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो एक सच्चे ख्रिस्ते के रूप में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरणा देती है। कहानी को सिस्टर एलेना इसाकेन को SMCB ने लिखा है और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कटुता। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भावना प्रधान होता है। हम सब भावों से संचालित होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, क्षमा, हार जीत, श्रद्धा, संदेह का महत्व भावनाओं से ही होता है। किसी से प्यार होना सामान्य बात है, उसी तरह किसी से एक तरफा प्यार होना सामान्य है। लेकिन खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। एक तरफा प्यार वाकई बहुत गहरा और अकेलापन देने वाला दर्द होता है, क्योंकि इसमें उम्मीद और अस्वीकृति का एहसास साथ चलता है। इसमें इंसान ना तो पूरी तरह आगे बढ़ पाता है और न ही पीछे हट पाता है। उस प्यार के रास्ते में आए अन्य व्यक्ति के प्रति मन में कड़वाहट या कटुता पाले जीवन की गाड़ी बढ़ती रहती है। जब भी उस व्यक्ति से आमना सामना होता है तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या कटुता बढ़ने लगती है। जाने अनजाने आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। ऐसे में कटुता को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय खुद के प्रति क्षमा भाव अपनाना और अहंकार को त्यागना है। मन का मैल और कड़वाहट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा, और किसी की गलती को माफ करने से मन का बोझ हल्का होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका कटुता।
1: मम्मी, अब हमने छिपकर तो कुछ नहीं किया ना? अमित ने अपनी मम्मी जया को सब कुछ बता दिया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और यह भी नहीं छिपाया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
2: वीणा बेटा, मानती हूँ कि तुमने और अमित ने अपने अपने घर में सब कुछ बता दिया और हमसे कुछ नहीं छुपाया। यह बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं अमित से तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
1: मम्मी, आप तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर अमित की मम्मी को न जाने किस बात की खुन्नस है हमसे कि हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही है। आखिर न जाने कौन सी और क्या बात है मम्मी?
2: बात क्या है बेटा, एक गलत फहमी है बस।
1: ऐसी कौन सी गलत फहमी है जया आंटी को?
2: बेटा, किसी समय मैं और अमित की माँ जया एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे।
1: सच मम्मी? फिर
2: मैं और तुम्हारे पापा भी एक दूसरे को वैसा ही चाहते और पसंद करते थे जैसे तुम और अमित एक दूसरे को पसंद करते और चाहते हो।
1: फिर
2: क्या बेटा, जया भी तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन ये पसंद करना और चाहना एक तरफा ही था, क्योंकि तुम्हारे पापा सिर्फ मुझे ही चाहते थे। कॉलेज में जब तक रहे जया मुझसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हुई तब से जया मुझसे बात ही नहीं करती। उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि तुम्हारे पापा को मैंने उससे छीन लिया। बस तभी से वह मुझसे नाराज़ रहने लगी है।
1: क्या मम्मी, जया आंटी भी अभी तक कॉलेज के दिनों में ही जी रही है। बरसों पुरानी बात को लेकर वह आज भी घूम रही हैं। जब जिन पापा की वजह से वह आज भी आपसे कटुता रखती हैं, वह पापा भी अब हमारे बीच नहीं रहे।
2: अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा।
3: देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी में मेरी मम्मी इतनी बाधा डाल रही हैं, तो कहीं हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़ जाए।
1: नहीं अमित, तुम कुछ भी बोलो, कोर्ट मैरिज के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये भी कोई शादी हो यार।
3: मगर इसके सिवा चारा भी क्या रह गया अब?
1: अच्छा अमित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मी क्यों हमारी शादी के खिलाफ है।
3: तुम क्या जानती हो क्यों खिलाफ है मम्मी?
1: मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जया आंटी और मेरे मम्मी पापा ये सभी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उधर तुम्हारी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत पसंद करती थी।
3: ओह।
1: लेकिन पढ़ाई के बाद जब मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई तो जया आंटी ने मम्मी से यह सोचकर कटुता पाल ली कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को उनसे छीन लिया है। बस तब से ही जया आंटी ने मेरी मम्मी से बातचीत ही बंद कर दी है।
3: ओह, तो यह बात है।
1: हाँ,
3: तभी तो मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा वाला कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी, तुम भी अच्छा कमा रही है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर तकलीफ किस बात की है?
1: आंटी ने मन में मम्मी के लिए जो कटुता पाल रखी है वही कटुता ही आंटी को हमारी शादी में बाधा बना रही है।
3: तुम सही कह रही हो शिखा, लेकिन क्या अगर हमने मम्मी की मर्जी के विरुद्ध शादी की तो क्या तुम तैयार हो?
1: हाँ अमित, मैं तो तब भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आंटी और अंकल दोनों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगी। तुम कुछ भी बोलो यार अमित।
3: पापा ने तो कब से हाँ कर दी है, लेकिन बस मम्मी को मनाना ही बाकी रह गया है।
1: तो फिर अंकल को कहो ना कि वे आंटी को मनाएं।
3: तुम तो जानती हो मम्मी के आगे पापा की चलती कहाँ है।
1: फिर
3: चिंता ना करो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: देखो बेटा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शिखा जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। फिर शादी के लिए दुनिया में क्या एक शिखा ही बची है तुम्हारे लिए? मैं उससे कहीं अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी तुम्हारी।
3: आखिर आपको शिखा पसंद क्यों नहीं है?
4: मैं कह चुकी हूँ, पसंद नहीं है तो नहीं है। हर एक चीज़ का कारण नहीं होता है।
3: और बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता।
4: मैं कह चुकी हूँ तुमसे।
3: तो फिर मुझसे ही सुन लो वह कारण जिसकी वजह से आप शिखा से नफरत करती हैं। और वह कारण है अपनी कॉलेज लाइफ में आपका शिखा के पापा से एक तरफा प्यार में पड़ना और उनका शिखा की मम्मी से शादी कर लेना। बस इसी बात को आपने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, इसीलिए आप अपनी उस हार को मेरी शादी से मना करके अपनी जीत में बदलना चाहती हैं।
4: ये क्या कह रहे हो बेटा तुम?
3: मैं सच कह रहा हूँ माँ, कभी कभी अतीत पर पड़ी समय की धूल को वर्तमान की आंधी भी उड़ा देती है और अतीत एक बार फिर सामने होता है।
4: तुम सच कहते हो बेटा, पर मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
3: यह इंसान की फितरत है माँ, जब वह हालातों से हार जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता है तो उनसे समझौता कर लेता है।
4: मगर जिस कटुता को मैंने सालों साल अपने दिल की दीवारों में कैद करके रखा है, एक ही झटके में उसे दिल से निकाल कैसे सकती हूँ मैं?
3: आप किसी से नफरत और उसकी कटुता का बोझ कब तक यूं ही ढोती रहेंगी? आपने जब ये कटुता पाली होगी तब से लेकर अब तक नदियों में कितना पानी बहकर यहाँ से वहाँ हो गया और आप अब भी वहीं की वहीं खड़ी हैं।
4: मगर बेटा वो
3: आपने भी कभी प्यार किया है माँ, आपको उसी प्यार का वास्ता। किसी को पा लेने और किसी को खो देने की खुशी और दर्द आप अच्छी तरह से समझती हैं, मान भी जाओ माँ।
4: ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में अब और अधिक बाधा नहीं बनना चाहती। कल हम शिखा के घर जरूर चलेंगे।
3: ओ माँ, यू आर अ ग्रेट मदर।
1: नमस्ते आंटी, आइए आइए। मम्मी देखो कौन आया है।
2: अरे जया, तुम आज यहाँ? आओ आओ बैठो।
3: नमस्ते आंटी।
2: नमस्ते बेटा। हाँ जया, और सुनाओ, आज मेरे गरीब खाने पर कैसे? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के।
4: वीणा, मुझे भी तुमसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही है।
1: तो इस खुशी को गले मिलकर मनाओ।
4: कैसी हो वीणा तुम?
2: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ।
4: क्या सुनाऊं वीना, ये वक्त ही है जो एक दूसरे से अलग भी कर देता है और एक दूसरे से मिला भी देता है। मुझे माफ़ कर देना वीना, मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती रही।
3: और अब आपकी खुशी का कारण बनने जा रही हैं आंटी।
4: हाँ वीना, मुझे भी शिखा बेटी और अमित का रिश्ता मंजूर है।
2: अरे बधाई हो जया, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही ली।
4: इतने सालों के बाद मैं आज रात हल्की होकर बहुत बहुत सुख की नींद सो पाऊंगी, वरना मेरे सीने पर एक बोझ सा था जिसके लिए मैं इतने सालों घूमती रही। सचमुच किसी को माफ़ कर देने से मन कितना हल्का और खुशी से भर जाता है।
2: सच बताऊं, मेरा भी मन जैसे हल्का होकर हवा में उड़ने लगा है।
0: कटुता, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अपर्णा सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु।

0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: प्रेम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में दाख बारी में काम करने वाले मजदूरों के दृष्टांत पर चिंतन किया और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि ईश्वर के रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं और उनकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 20 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: आज की धर्मविधि में नबी इसाईस के द्वारा प्रभु हमें एक महान आशा प्रदान करते हैं। यह बतलाते हुए कि उनके विचार हमारे विचार नहीं हैं और उनके मार्ग हमारे मार्ग नहीं। संत पापा ने कहा,
1: सी, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: जी हाँ, ईश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं और हम कह सकते हैं अधिक मानवीय उन योजनाओं से जो हम पापी सोचते या पूरा करते हैं। इसलिए नबी की पुकार जो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम अपने बिगड़े हुए रास्ते छोड़ दें और प्रभु के पास लौट आएं जो दयालु और क्षमाशील हैं।
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, सुसमाचार में यीशु का दृष्टांत बताता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या नया रखा है, लेकिन वह यह भी दर्शाता है कि हम आम तौर पर अधिक उदार न्याय एवं अधिक प्यार का विरोध करते हैं। हम विशेषकर दाख बारी में काम करने के लिए बुलाए गए मजदूरों के दृष्टांत में सुनते हैं, जिसमें कुछ मजदूर पूरे दिन के लिए काम करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ घंटों के लिए और कुछ सिर्फ सूरज डूबने से पहले। लेकिन दृष्टांत का केंद्र बिंदु मजदूरी देने के पल में है, जब भूमि के मालिक सुबह से काम करने वाले मजदूरों से अपना वादा निभाते और उन्हें तय मजदूरी देते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि वे उनकी अच्छाई देखें और उनकी आँखों के सामने अंत में आए मजदूरों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। संत पापा ने दृष्टांत की दूसरी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हुए कहा,
1: Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: जमीन का मालिक प्रबंधक को एक विशेष आदेश देता है कि मजदूरों को अंतिम से शुरू करके पहले तक वेतन दिया जाए। जिन लोगों ने पूरे दिन काम किए थे उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर किया गया क्योंकि ईश्वर की अच्छाई सबके लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। ईश्वर के पास अलग अलग तरीके और नए विचार हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को पहला मानते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है उसके वे ही हकदार हैं। लेकिन इसके विपरीत हम तभी आनंद, प्रज्ञा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त करते हैं जब प्यार का नियम हिसाब किताब को रोकता है, जब दया का अनुभव योग्यता को बढ़ाता है और जब शांति का वरदान दुश्मनी को खत्म करके हमें कृतज्ञता के द्वारा एक दूसरे के करीब लाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के साथ काम करने वाले बनना, उनकी दाख बारी में मेहनत करना, उनके न्याय एवं शांति के राज की सेवा करना सच में एक कृपा है। जहाँ ईश्वर की नई चीजें सामने आती हैं, वहाँ जलन या फूट के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जब तक प्रभु मिल सकते हैं हम उन्हें ढूंढें, जब तक वे पास हैं हम उन्हें पुकारें। हम टेढ़े मेढ़े रास्तों और बुरे विचारों को छोड़ दें। तब संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा,
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: आइए हम हमारी अति प्यारी माँ की ओर देखें, क्योंकि वे भी हमारी तरह श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन निष्कलंक हैं। इस तरह वे हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और खुद को उनकी दया पर सुपुर्द करने में मदद करेंगे, ताकि उनके तरीके हमारे तरीके बन सकें और उनके विचार हमारे विचार बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने सोमालिया के इलाकों में हिंसा खत्म करने और चल रहे मानवीय संकट में मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Seguo con grande preoccupazione.
0: मैं सोमालिया के कुछ हिस्सों में हो रहे मानवीय संकट पर बहुत चिंता के साथ नजर रख रहा हूं, जहां हिंसा और खराब मौसम की घटनाएं लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के पहले से ही खराब रहन सहन को और खराब कर रही हैं। हाल के महीनों में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने इस अफ्रीकी देश के लिए अपनी मानवीय मदद में भारी कमी की है। मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि उनके पहले से कम किए गए बजट का सिर्फ एक तिहाई ही फंड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य सामग्री की मदद भी कम कर दी है, जिससे 2026 में 2 मिलियन लोगों की मदद से सिर्फ 6 लाख लोगों की मदद हो पाएगी। 2026 में पूरे इलाके में बारिश औसत से काफी कम रही है, जिसकी वजह से कई परिवार पानी की तलाश में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने दानदाताओं से मुद्दुग इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण सेवाओं को फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद करने की अपील की है, जहां 70 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं। 1991 में मोहम्मद सायद बर्रे के पतन के बाद से सोमालिया में आंतरिक लड़ाई जारी है और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गांव के इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद जताते हुए कहा,
1: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
0: मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दिल खोलकर शामिल होगी, ताकि हमारे इन भाइयों और बहनों को आवश्यक मदद की कमी ना हो। इसके बाद संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 21 सितंबर को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने इटली की कपुचिन गरीब क्लारा धर्म बहनों के संघ की सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। सहृदय स्वागत करते हुए संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपसे मिलकर और चिंतन के इस पल को आपके साथ साझा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ख्रिस्तियों को अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीने के लिए संत पौलुस के निमंत्रण पर विचार करते हुए संत पापा ने धर्म बहनों को चिंतनशील प्रार्थना, गरीबी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करते हुए निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा, यह निष्ठा का आह्वान है जिसका जवाब आपका संघ संत क्लारा और संत फ्रांसिस की आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुसार देता है। चिंतनशील प्रार्थना, सादगी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करके इस सिलसिले में संविधान को संशोधित और अपडेट करने के लिए आपने जो काम किया है, इसमें कई लोगों के योगदान को शामिल किया गया है, वह तारीफ के काबिल है। इनमें फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी धर्म बहनों का पहला और मुख्य कर्तव्य ईश्वरीय सच्चाइयों पर चिंतन करना और प्रार्थना के जरिए ईश्वर से लगातार जुड़े रहना है। बुलाहट में कमी को देखते हुए संत पापा ने उन्हें भी वही बात फिर से याद दिलाया जो उन्होंने इटली धर्म प्रांतों और सेमिनरी धार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में कहा था। संत पापा ने कहा, आइए इस वास्तविकता पर विचार करते हुए परिपेक्ष्य बदलने का प्रयास करें। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे वास्तव में हमें अप्रत्याशित क्षमता को खोजने या फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं। संख्यात्मक ताकत के संबंध में नहीं, बल्कि प्रस्ताव की गुणवत्ता के संबंध में समुदायों की संख्या में कमी और इसके कारण अपनी स्वायत्तता खोने का डर उन्हें परेशान या निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे उनके जीवन जीने के तरीके में नयापन आना चाहिए और मठ के दरवाजों पर आने वालों को आध्यात्मिक सहारा देने के प्रति उनका संकल्प और भी मजबूत होना चाहिए। आगे संत पापा ने कहा कि संत क्लारा की धर्म बहनों के तौर पर आपके पास एक खास संदेश है जिसे आपको फैलाना है। यह संदेश मुख्य रूप से नियम और संविधान का पालन करके दिया जाता है। दुनिया की सभी चीजों को पीछे छोड़कर सुसमाचार के अनुसार जीना और अपने जीवन के पहले और एकमात्र प्रेम की ओर पूरी तरह और लगातार मुड़े रहना आपके अस्तित्व और मिशन का अहम हिस्सा है। इसमें सादगी, भौतिक चीजों से मोह न रखना, आज्ञाकारिता में खुद को समर्पित करना और पारदर्शिता शामिल है। इसका मतलब है कि एक ऐसा जीवन जीना जो सरल तो हो लेकिन साथ ही क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण भी, वफादारी की एक अनमोल निशानी, खासकर आज की इस ग्लोबलाइज्ड और बेचैन दुनिया में जिसमें जड़े जमाने की इच्छा और काबिलियत खो गई लगती है। मैं आपके जीवन यात्रा के लिए इन तरीकों को पक्के रास्ते के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। एक दूसरे की बात सुनना, एक मकसद के लिए साथ आना ताकि अकेलेपन से बचा जा सके, सेवा करना और साथ मिलकर काम करना और सुसमाचार की गवाही देना। उधर रविवार 20 सितंबर को स्लोवाकिया भर से हजारों लोग जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च हेतु ब्रातिस्लावा में एकत्रित हुए। संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च प्रार्थना और गवाही का एक ऐसा पल बने जो जीवन के उस अनमोल तोहफे के प्रति नई जागरूकता जगाए जो हमें ईश्वर से मिला है और जिसका गर्भधारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक हर चरण में स्वागत और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो विशेष रूप से सबसे कमजोर और असहाय लोगों का ख्याल रखे और इस तरह एकजुटता पर आधारित एक अधिक भाईचारे वाले समाज के निर्माण में योगदान दें। वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए स्लोवाक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव
फादर इवान रुसिका ने मार्च के लिए संत पापा के समर्थन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर मानव के जीवन की गरिमा के लिए खड़े होने हेतु एक साथ आए हैं। फादर रुजिका ने कहा कि मार्च का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की सहायता के साथ अजन्मे बच्चों की सुरक्षा को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम स्लोवाकिया में सरोगेसी पर पूरी तरह कानूनी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका में कानून बनाने वालों से मांग की गई है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करने वाले सभी समझौतों पर रोक लगाएं। उधर मालावी की कैथोलिक कलीसिया ने धर्म प्रचार के 125 साल पूरे होने का समारोह डेडजा धर्म प्रांत के संत मरिया नजामा पल्ली में पवित्र मिसा समारोह के साथ मनाया। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 1901 में मोंटफोर्ट मिशनरियों ने मालावी में पहला स्थायी कैथोलिक मिशन स्थापित किया था। पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नुआचुकु ने की, जो परम धर्मपीठ सुसमाचार प्रचार विभाग के सचिव और जुबली समारोहों के लिए संत पापा लियो 14वें के विशेष प्रतिनिधि थे। इस समारोह के दौरान डीकन तिमोथी और पीटर बेंगो का पुरोहिताभिषेक भी किया गया। इससे कलीसिया के मिशनरी अतीत की यादों को मलावी में उसके जारी मिशन से जोड़ा गया। उधर रूस में 3 दिन तक चलने वाले संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ लड़ाई जारी है और रूस के चुनावी सिस्टम पर हमलों की खबरें भी आ रही हैं। यह चुनाव मॉस्को द्वारा 4 साल से पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से पहला संसदीय चुनाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला, जबकि देश भर में मतदाता पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मॉस्को में ऑनलाइन वोटिंग व्यवस्था पर रात भर जबरदस्त हमला हुआ। सरकारी मीडिया ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों को अब तक सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में दाख बारी में काम करने वाले मजदूरों के दृष्टांत पर चिंतन किया और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि ईश्वर के रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं और उनकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 20 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: आज की धर्मविधि में नबी इसाईस के द्वारा प्रभु हमें एक महान आशा प्रदान करते हैं। यह बतलाते हुए कि उनके विचार हमारे विचार नहीं हैं और उनके मार्ग हमारे मार्ग नहीं। संत पापा ने कहा,
1: सी, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: जी हाँ, ईश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं और हम कह सकते हैं अधिक मानवीय उन योजनाओं से जो हम पापी सोचते या पूरा करते हैं। इसलिए नबी की पुकार जो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम अपने बिगड़े हुए रास्ते छोड़ दें और प्रभु के पास लौट आएं जो दयालु और क्षमाशील हैं।
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, सुसमाचार में यीशु का दृष्टांत बताता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या नया रखा है, लेकिन वह यह भी दर्शाता है कि हम आम तौर पर अधिक उदार न्याय एवं अधिक प्यार का विरोध करते हैं। हम विशेषकर दाख बारी में काम करने के लिए बुलाए गए मजदूरों के दृष्टांत में सुनते हैं, जिसमें कुछ मजदूर पूरे दिन के लिए काम करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ घंटों के लिए और कुछ सिर्फ सूरज डूबने से पहले। लेकिन दृष्टांत का केंद्र बिंदु मजदूरी देने के पल में है, जब भूमि के मालिक सुबह से काम करने वाले मजदूरों से अपना वादा निभाते और उन्हें तय मजदूरी देते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि वे उनकी अच्छाई देखें और उनकी आँखों के सामने अंत में आए मजदूरों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। संत पापा ने दृष्टांत की दूसरी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हुए कहा,
1: Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: जमीन का मालिक प्रबंधक को एक विशेष आदेश देता है कि मजदूरों को अंतिम से शुरू करके पहले तक वेतन दिया जाए। जिन लोगों ने पूरे दिन काम किए थे उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर किया गया क्योंकि ईश्वर की अच्छाई सबके लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। ईश्वर के पास अलग अलग तरीके और नए विचार हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को पहला मानते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है उसके वे ही हकदार हैं। लेकिन इसके विपरीत हम तभी आनंद, प्रज्ञा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त करते हैं जब प्यार का नियम हिसाब किताब को रोकता है, जब दया का अनुभव योग्यता को बढ़ाता है और जब शांति का वरदान दुश्मनी को खत्म करके हमें कृतज्ञता के द्वारा एक दूसरे के करीब लाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के साथ काम करने वाले बनना, उनकी दाख बारी में मेहनत करना, उनके न्याय एवं शांति के राज की सेवा करना सच में एक कृपा है। जहाँ ईश्वर की नई चीजें सामने आती हैं, वहाँ जलन या फूट के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जब तक प्रभु मिल सकते हैं हम उन्हें ढूंढें, जब तक वे पास हैं हम उन्हें पुकारें। हम टेढ़े मेढ़े रास्तों और बुरे विचारों को छोड़ दें। तब संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा,
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: आइए हम हमारी अति प्यारी माँ की ओर देखें, क्योंकि वे भी हमारी तरह श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन निष्कलंक हैं। इस तरह वे हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और खुद को उनकी दया पर सुपुर्द करने में मदद करेंगे, ताकि उनके तरीके हमारे तरीके बन सकें और उनके विचार हमारे विचार बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिति का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने सोमालिया के इलाकों में हिंसा खत्म करने और चल रहे मानवीय संकट में मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Seguo con grande preoccupazione.
0: मैं सोमालिया के कुछ हिस्सों में हो रहे मानवीय संकट पर बहुत चिंता के साथ नजर रख रहा हूं, जहां हिंसा और खराब मौसम की घटनाएं लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के पहले से ही खराब रहन सहन को और खराब कर रही हैं। हाल के महीनों में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने इस अफ्रीकी देश के लिए अपनी मानवीय मदद में भारी कमी की है। मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि उनके पहले से कम किए गए बजट का सिर्फ एक तिहाई ही फंड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य सामग्री की मदद भी कम कर दी है, जिससे 2026 में 2 मिलियन लोगों की मदद से सिर्फ 6 लाख लोगों की मदद हो पाएगी। 2026 में पूरे इलाके में बारिश औसत से काफी कम रही है, जिसकी वजह से कई परिवार पानी की तलाश में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने दानदाताओं से मुद्दुग इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण सेवाओं को फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद करने की अपील की है, जहां 70 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं। 1991 में मोहम्मद सायद बर्रे के पतन के बाद से सोमालिया में आंतरिक लड़ाई जारी है और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गांव के इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद जताते हुए कहा,
1: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
0: मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दिल खोलकर शामिल होगी, ताकि हमारे इन भाइयों और बहनों को आवश्यक मदद की कमी ना हो। इसके बाद संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 21 सितंबर को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने इटली की कपुचिन गरीब क्लारा धर्म बहनों के संघ की सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। सहृदय स्वागत करते हुए संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपसे मिलकर और चिंतन के इस पल को आपके साथ साझा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्रिश्चियों को अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीने के लिए संत पौलुस के निमंत्रण पर विचार करते हुए संत पापा ने धर्म बहनों को चिंतनशील प्रार्थना, गरीबी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करते हुए निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा, यह निष्ठा का आह्वान है जिसका जवाब आपका संघ संत क्लारा और संत फ्रांसिस की आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुसार देता है। चिंतनशील प्रार्थना, सादगी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करके इस सिलसिले में संविधान को संशोधित और अपडेट करने के लिए आपने जो काम किया है, इसमें कई लोगों के योगदान को शामिल किया गया है, वह तारीफ के काबिल है। इनमें फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी धर्म बहनों का पहला और मुख्य कर्तव्य ईश्वरीय सच्चाइयों पर चिंतन करना और प्रार्थना के जरिए ईश्वर से लगातार जुड़े रहना है। बुलाहट में कमी को देखते हुए संत पापा ने उन्हें भी वही बात फिर से याद दिलाया जो उन्होंने इटली धर्म प्रांतों और सेमिनरी धार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में कहा था। संत पापा ने कहा, आइए इस वास्तविकता पर विचार करते हुए परिपेक्ष्य बदलने का प्रयास करें। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे वास्तव में हमें अप्रत्याशित क्षमता को खोजने या फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं। संख्यात्मक ताकत के संबंध में नहीं, बल्कि प्रस्ताव की गुणवत्ता के संबंध में समुदायों की संख्या में कमी और इसके कारण अपनी स्वायत्तता खोने का डर उन्हें परेशान या निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे उनके जीवन जीने के तरीके में नयापन आना चाहिए और मठ के दरवाजों पर आने वालों को आध्यात्मिक सहारा देने के प्रति उनका संकल्प और भी मजबूत होना चाहिए। आगे संत पापा ने कहा कि संत क्लारा की धर्म बहनों के तौर पर आपके पास एक खास संदेश है जिसे आपको फैलाना है। यह संदेश मुख्य रूप से नियम और संविधान का पालन करके दिया जाता है। दुनिया की सभी चीजों को पीछे छोड़कर सुसमाचार के अनुसार जीना और अपने जीवन के पहले और एकमात्र प्रेम की ओर पूरी तरह और लगातार मुड़े रहना आपके अस्तित्व और मिशन का अहम हिस्सा है। इसमें सादगी, भौतिक चीजों से मोह न रखना, आज्ञाकारिता में खुद को समर्पित करना और पारदर्शिता शामिल है। इसका मतलब है कि एक ऐसा जीवन जीना जो सरल तो हो लेकिन साथ ही क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण भी, वफादारी की एक अनमोल निशानी, खासकर आज की इस ग्लोबलाइज्ड और बेचैन दुनिया में जिसमें जड़े जमाने की इच्छा और काबिलियत खो गई लगती है। मैं आपके जीवन यात्रा के लिए इन तरीकों को पक्के रास्ते के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। एक दूसरे की बात सुनना, एक मकसद के लिए साथ आना ताकि अकेलेपन से बचा जा सके, सेवा करना और साथ मिलकर काम करना और सुसमाचार की गवाही देना। उधर रविवार 20 सितंबर को स्लोवाकिया भर से हजारों लोग जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च हेतु ब्रातिस्लावा में एकत्रित हुए। संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च प्रार्थना और गवाही का एक ऐसा पल बने जो जीवन के उस अनमोल तोहफे के प्रति नई जागरूकता जगाए जो हमें ईश्वर से मिला है और जिसका गर्भधारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक हर चरण में स्वागत और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो विशेष रूप से सबसे कमजोर और असहाय लोगों का ख्याल रखे और इस तरह एकजुटता पर आधारित एक अधिक भाईचारे वाले समाज के निर्माण में योगदान दें। वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए स्लोवाक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव
फादर इवान रुजिका ने मार्च के लिए संत पापा के समर्थन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर मानव के जीवन की गरिमा के लिए खड़े होने हेतु एक साथ आए हैं। फादर रुजिका ने कहा कि मार्च का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की सहायता के साथ अजन्मे बच्चों की सुरक्षा को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम स्लोवाकिया में सरोगेसी पर पूरी तरह कानूनी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका में कानून बनाने वालों से मांग की गई है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करने वाले सभी समझौतों पर रोक लगाएं। उधर मालावी की कैथोलिक कलीसिया ने धर्म प्रचार के 125 साल पूरे होने का समारोह डेटजा धर्म प्रांत के संत मरिया नजामा पल्ली में पवित्र मिसा समारोह के साथ मनाया। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 1901 में मोंटफोर्ट मिशनरियों ने मालावी में पहला स्थायी कैथोलिक मिशन स्थापित किया था। पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नुआचुकु ने की, जो परम धर्मपीठीय सुसमाचार प्रचार विभाग के सचिव और जुबली समारोहों के लिए संत पापा लियो 14वें के विशेष प्रतिनिधि थे। इस समारोह के दौरान डीकन तिमोथी और पीटर बेंगो का पुरोहिताभिषेक भी किया गया। इससे कलीसिया के मिशनरी अतीत की यादों को मलावी में उसके जारी मिशन से जोड़ा गया। उधर रूस में 3 दिन तक चलने वाले संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ लड़ाई जारी है और रूस के चुनावी सिस्टम पर हमलों की खबरें भी आ रही हैं। यह चुनाव मॉस्को द्वारा 4 साल से पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से पहला संसदीय चुनाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला, जबकि देश भर में मतदाता पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मॉस्को में ऑनलाइन वोटिंग व्यवस्था पर रात भर जबरदस्त हमला हुआ। सरकारी मीडिया ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों को अब तक सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।